0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

ब्रह्मा कमलमा विष्णु जलमा सौनका दृषि प्रणाली यदि भइसकेपछि बडो संकट पर्यो र अब समाधान को निमित्त ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गर्दा ब्रह्माले सक्नु भएन। अनि वृत्रासुर मार्न के गर्ने भनेर प्रार्थना गर्दा शिवजी को चरण में गए विनती करे। राजा परीक्षित का हजुरमा सुखदेव ने बड़ो प्रेम प्रभु श्रीमद भागवत को महिमा को बारे में प्रकाश पारी बक्सो। बहुता सौन का दृषि प्रणाली इसी प्रसंग को बीच में यहां मैं जो कथा प्रमाण करे। अब ब्रह्माजी संभव भएन, शिवजी ने वृत्रासुर मार्न सक्ने संभावना को आफ्नो कुरो जाहिर गरेको छैन। अब विष्णु भगवानलाई नै विन्ती गर्नु पर्यो भनेर प्रभुको चरणमा गएर विन्ती गरे। श्याम सुन्दर भगवान गर्छौ पुकार, श्याम सुन्दर भगवान।